मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, कृष्ण चरावत गाऊ रे, बिंद्रावन मन

अपनी सेवा प्रवान करी संता देव जो सदगुरु सभी भजन के बैठ के आप जी हरि जस द्वारा हरि कीर्तन द्वारा बरसाए जा रहे हैं। हरि नाम रूप मोती चुपके मनुख जीवन सफला बना रहे सदगुरु महाराज बख्श कर सारे दिहाजी अपने दाते लाऊं सारे के सिर के उत्ते बख्शिश बराहत रखन अंग संताए मोर देश परदेश रखा कर आओ जितनी संगत बैठी है गुरु पास रे चरना कमला चित जोड़ो छोलिया के ही अरदास बिनती करो सतगुरु जीओ कृपा करके अपने पवित्र नाम की खैर साड़ी छोलिया पाओ आओ सारे जपो कोई सना कर ना जाए।

सहबानी बख्शिश की थी भाई साहब साहित्य वाणी जंगराज से स्वाई भाई साहब नरमकारी बाबे थे आमद बड़े प्यार लागे अंतरिक्ष गुरुमुख कर्म प्रगट हो गुरुमुख दार है मुख गुरु अर्जुन देव जी आप नारायण कला धार जग में परवर फिर मुख गुरु सारे गुरुआ तो मुख गुरु काम प्यार का आपको धन गुरु नाने और जो भी अवतार पैगंबर इस मात्र को आए सब लोग गुरु का करना सारे गुरु धारण करना पे सारे गुरु बड़ा गुरु नानक तो हजार गुरु गुरु साहब के दूसरी जी बदली तो जैसे गुरु गुरु नानक गुरु कल मुख गुरु कलयुग प्रगट हो दुनिया में पवित्रता की रोशनी दिखती सच की रोशनी दिखती नाम रूपी रोशनी दिखती गुरु का अर्थ बाबा जी बचत करते सन दो नाम देहेदा है रू नाम प्रकाश है दो नाम अज्ञानता का है रू नाम ज्ञान है पूरा गुरु है जिसकी पेट नाल जिसके संगम नाल जिसके निराश के नाल अज्ञानता का निरा दूर हो जाए रूप ज्ञान का प्रकाश एक पूरे गुरु के लक्षण पूरा गुरु काम लिखी फिर मुखड़े पवित्र करो प्यार ना आखो संगम नाल निकले गुरु प्रगट करो अज कल की जीवन में उधार करने वास्ते बाबा सांसा दे रहे इस राय दुरार दर्शना वास्ते व्या एक साल नहीं दो साल नहीं बारह साल हो चुके राय दुरार उनके उसे बुढ़ेपे भी है चुड़ियां पै गई लक्षमान वापस प्यारी साहब सिंह राय बुलाल राय भले कमेटी का मालिक मुसलमान हो गया है पर धन गुरु नानक के प्यार से राज रोंदा रहा दीवाना हो ना रात्रि नींद है ना दिने चैन है दो मेरे दादिया मैं कभी का गुरू जुड़ा हा कोई पता नहीं किसी ने मौत की छत आवे से रोड के ले जावे कि सोने का चुना और कुछ नहीं चाहूंगा प्यार वाले की इच्छा बाबा कृष्ण जी महाराज वचन कर देते डॉक्टर को जाइए मैं सारिया एनकम आदि एनक एक ऐनक जी होती है वो पढ़न भी होती एक ऐनक दूर वेखन भी होती एक शौकीनी भी ऐनक लगा देंगे नाथ शरीर वाले एक दिन सारा जलंधर सूट बैने जा रहे हैं गति ठीक नहीं थी बस ही सफर कर रहे हैं गर्मी के दिन भी सर सर्दी और खास गर्मी में एक यंग मैन नौजवान लड़का मेरी सीट ने नाम देखा हुआ देखिए बड़ा सुंदर नौजवान है मैं पूछा काका तेरी सेहत तो बड़ी चंगी है पर तेरी अखा खराब हो गई हर साल मैं खिलाई देता है अब तेरा कह लगा भाई जी
ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਨ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਿਊ ਲਾਈਟ ਦੀ ਐਨ ਕਿ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੁੱਕ ਜਾ ਪਰ ਨਿਊ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਕੁਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਐਨਕ ਸਰਦਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਉਣ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਪਾਓ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਖਲੀ ਮੇਰਾ ਜੀ।

खैर फैल जाएगी। दर्शन की अजराय उदास रोता चल जाए, मेरे धनुराज डाल जाएगी एक मेरी दर्शन। तलुंडी के सारे रहने वाले बड़े हैरान, राय बदार मुखी हो हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक टूटता फिरता है, राय बदार चला होंगे राय बदार मुखी हो हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक टूटता फिरता है, राय बदार चला होंगे राय बदार पढ़ता है ते कहना प्यारे हो गुरु नानक का प्यार जो मैंने मिलिया हो नहीं, यह तो अंत का प्यार है, अदम का प्यार है, पता नहीं किड़े जन्मों का प्यार है। तो राय गुलाब रो के उन्होंने कह देना

निकलता हूँ। जितने भी जगह लोग ठीके में है, कोई कहता है किसे नुए माया का प्यार है, कोई किसे को मां वड्याई का भुखा देता है, पर राय बुला के दाते मैनू लोकी ठीके में है, तो राय बुला कहता है जहां भी जा निकल।

सारे महापुरुषों ने साधा ने धन गुरु नानक अगे नमस्कार की सारे ने कहा धन गुरु नानक देवता साधवान प्रसाद छका के हजूर वापस मुड़े तलवंडी के नेड़े आए कह लगे बाले बाले आती तो इतने बवाने तू घर चला जा। बाले ने किया बड़ा समझाया कि नहीं समझे गलती कर बैठे हैं ना हूं इतने रुक के बहना चाहते सतमुच बाला अपने घर आ गए कल उड़ीकता पिया नानक सच्चा सौदा करने वास्ते गया होया आया नहीं किसी ने क्यों नहीं था जी भाई बाला आ गया। अच्छा फिर नानक क्यों नहीं आया मैं क्या कहू भाई बाले ने घर चला बाले है जी बैठा है नानक किथे भाई बाला बोले मैं तेरे सिर पूछे नहीं बोले तीजी लेनी और जी किया उथे वणा दिया चंगिया में लुक के बैठा क्यों क्यों लुकिया है बनाए दसो भी रुपये थानू दिते सन कितने क बना के लिया ने तीह के पच्ची बाले ने किया मैं ताजी रुपये की बना के लियाने सानू तो मूड़ी गुल हो गई है आखो श्री बने मूड़ी और किस तरह सारी विख्या कर कालू के अंदर गुस्से की ज्वाला बढ़ तेरा लाल हो गया किथे है नानक अज मैं नानक नू जीवदा नहीं छा मेरा घर उजाड़ जा रहा है नेता काजू क्रोध पिंडाल माता त्रिता नु पता लग रहा अज बड़ा गुस्सा आया हो रहा है पता नहीं मेरे लाल लाल की करे बुलाया नहीं नानकी जी अम्मी जा तू जाके पिता नु समझा दे कोई भी 20 रुपये ही है बेबे 100 रुपये मां ने सोचा नौजवान जी घरों पर भेज दिता है पिछे नौकर भेज दिता नहीं रह सकी मां आप भी मगर मगर कर ली कालू कौन चुके अगे हजूर समाधि लगा के बैठे कर पता नहीं केड़े प्रोग्राम पर सोचते जगत जनते ठंड पाने वास्ते पता नहीं दादा केड़े विचारा जाते ही पैसे कालू ने हजूर की बात पकड़ के खड़ा कर लिया गुस्से लाल अखा करके गया कितने हर मेरे वीर भी कल सुनने दुनिया का दाता हजूर ने एक मेरी अखा खोल के पिता वाल तकिया फिर नजर दिए कर गुस्सा चंडाल ने इस चंडाल गुस्से ने किया तेरी सास संगत मैं ते कालू का खब्बा हथ फेरा ते मेरे धन गुरु नानक की सच्ची सच्ची गल दे उत्ते चपेट में सोहना मुखड़ा गुलाब वाला मुखड़ा इतना सोहना मुखड़ा चपेट वजी गुलाब दिया पंखड़िया कुमलान लगे या नीर पै गए देते पहुंच देवे ने सोचिया चंगे मौके से पहुंच गई आज मेरे पिताजी ने वीर वास्ते कुछ नहीं किया पर तेरे अगे होके तकिया की तकिया नंकारी वीर के सोने मुखरे से नील पे उपा मार के रो कह लगी पिताजी मेरे वीर नाम है कभी वीर नाम है मैं देखी कहती है

परमेश्वर आप होवा रखवाला, परमेश्वर आप होवा रखवाला। शांत सहज सुख खिन मह उपजे।

एतन होती खाक में मारी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गौर करे आज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया आज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी दुनिया लग

चलने चलना हार बिचारा ले मनो चलने चलना हार बिचारा ले मनो गंडे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठीनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए

कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया जीड़िया परदेसिया जिस वक्र को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाया तज अभमान लिया मनमोहन राम नाम हृदय में तो लाद के

नाश करे जीवन पर कारण लोचन तछ न सूझे कैस कबीर सूरे प्राणी कैस कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाहा, हम क्यों कर जबे आने हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला हर कृपा।

नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे त्रिग जीवा। कोई गुरमुख सज्जन ये मिले मैं दसे प्रभ गुण दास, और किस विट्टो चौखनिए मैं नाम कर।

गुरु साजी दवाजी सतसंग जीओ राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहा। श्री राग का जो चलन है वह दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचमा सुर जो है वह इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ है, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाव है वो ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नू असीं दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इस नू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ये ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म दृढ़तांग दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी ब्रिते बांग तागड़ी तोम तोम तोम दिरना, दागड़ी दे ताल कागड़ी कोम किरना। ये साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे ताल कागड़ी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगा कुम किरना नाल दे ताल दागड़ी दे ताल के तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नूं राग विच ताल विच गायन करना, इस नूं कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ी दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

अमृतसर सतगुर सत भक्ति जितना पे कौआ हंस हो अमृतसर की अमृतसर गुर अमृतसर न बढ़ाया सब जाते गिल वेख पंग

श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जति पासू शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

सब में रव रया प्रभु एक है, सब में रव रया प्रभु एक है, सब में रव रया रया रया सब एक है, सब में रव रया।

0: भ्रमण करो।
1: पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हम तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हम तीन ताल जो कब तीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे आ राव जोग

0: एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात्पराई, जब दिशासन में पाई ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब की नो सो भल मान्यो, इस मत साधन दे पाई, सब में रब रहे अपना भी कह, देख देख नानक दिखाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने यह तराना जेड़ा है यह अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नूं तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असां वी वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए, कहिंदे गाए ते तुसीं सुनाओ, इह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी इह सानूं लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही सरवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणा नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब तो तराना सरवण करना, साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ अंदर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना।
1: तद्र दानी दानी दोमरानी तल तोम तिरना, तद्र दानी दानी दोमरानी तल तोम तिरना, तल तुम तरना, तल तुम तिरना।
0: जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज नु मत्था टेकना जे, तुम दानी हम भिखारी हैं और तुम दानी है।
1: तत्र दानी दानी तुम दानी तलल तुम
0: तत्र दानी दानी तुम दानी तलल तुम तिरना, तलल तुम तिरना, तलल तुम तिरना, तत्र दानी दानी।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ए ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। धागड़ती धर्म धृत बांग दागड़ती दिम दिरना, बागड़ती ब्रिकते बांग तागड़ती तोम तोम तोम दिरना, दागड़ती दे ताल कागड़ती कोम किरना। यह साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ती दे ताल कागड़ती कोम किरना। इसका अर्थ है कि कुंभ किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगानी कुंभ किरना नाल दे ताल दागर दी दे ताल। जे तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाना, ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इसनू कीर्तन कहिंदे। ये राग ते ताल कट दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा पाठ हैगा। तो पाठ जड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल के विच गायन करना जड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

0: अमृतसर सतगुर सत भक्ति जित नाते कौआ हंस होए
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर नव लाया सब जाते इल वेख पंग
1: सतगुर

0: Peter.
1: श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे राग जति पासु शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

राकारणा महला पंजवा बिसर गई सब तात जब ते साधु संगत मोय रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगले

जन्म अर्थ अनेक अनेकायु सज्जन लोड़वंद पुरुष दाता जिन्हें दानी पुरुष हो गए उन्होंने पाप जानते हैं दानी पुरुष होना उसी उस सपना भी माया लिंदा है जिस तरह का उतारता है। तो इसी तरह भाई साहब दसते हैं कैसे गुरसिख आवत है अनेक कैसे गुरशब्द गुरु शरण के अनेक आए कोई को चल के आता है कोई कितों चल के आता है जो जो जिस तरह की भावना लेके गुरु महाराज की चरण शरण आता है उसी तरह की कामना लेके सतगुरु में जाता है। आओ कोई सुना साधना जा

राग गौड़ी दक्षिणी विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार धैवत सुर वर्जित हैं। इस दी जाति औडव संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा सवेर दा पहला पैर है। इस राग विच नाम मिले चले मैं नाल शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।

इस पर पंच में साचे नाम की वड्याई, मत को धरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर मान समाना।

बिना भजन भगवान दे भाव भगत बिन ठौर न ठाई। लहे कमाणा एत जुग पिछली जुगी करी कमाई। पाया मानस देह नो एथों चुकिया ठौर न ठाई।

आई। भाव भगत परवान है होम जग ते पुरब कमाई, करके नीच सदावना ता प्रभ अंदर लेके पाई। कल युग

नहीं, जिनकी कुल मूढ़न की महा, जिन्हां दे कुल खानदान अनपढ़ सन, मूढ़ सन, उन्हां नूं पढ़ा के गुरुदेव ने निर्मले संत बना दिता। जिनकी कुल मूढ़न की महा, अखर भेव न जाने कहां, से पंडित तब पढ़ पढ़ बने, निज समता किसको ने गने, इम गादर ते शेर बनाए, बायस हंस चाल सिकराए। जिदड़ा तू शेर ते कावां तू हंस बना दिता,

0: मन मूर्ख अजहू नहीं समझत सिख दे हारियोनी सिख दे हारियोनी
1: नानक पौजल पार परे।